0: आदरणीय श्रोता, प्रस्तुत सामग्रीसँगै कार्यक्रम जीवनको वचनको निर्धारित समय सकिन लाग्यो। हामीलाई विश्वास छ आजको कार्यक्रमले तपाईलाई उत्साहित र आशिषित तुल्याएको छ। अब भने कार्यक्रमलाई बीट मार्ने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम के कस्तो लाग्यो, कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9855138516 र 9868553349 जुनसुकै बेला सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हौस् त श्रोता, भोलि पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजका लागि कार्यक्रम जीवनको वचनबाट म प्रस्तोता गोविन्द विश्वकर्मा पनि विदा हुन चाहन्छु। हौस् त, जय मसीह।
1: विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर तपाईहरुको सेवामा समर्पित न्यू टिपटप ह्यान्डिक्राफ्ट सिद्धलीको गाउँपालिका एक बैरेनी धादिङ। हामी कहाँ विभिन्न स्कूल कलेज संघ संस्थाका ट्र्याकसुट तथा रेडीमेड सामान पाइनुका साथै धादिङ, गोर्खा, चितवन र नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरूमा सामान डेलिभरीको समेत सुविधा रहेको छ। प्रोपाइटर रामजी परियार, फोन नम्बर 9141867764, 9141867764।
2: अब रंग थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो।
3: ए परमेश्वरला सेमनिबा संतान हिम्बा जयमसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुल्ला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथला जीवनला छेन गदे श्रृंखलाला अंक नौरी रंगीर स्वागत मुला नबियोग तामाङ दत्ते नला छ्याम्नोन परमेश्वर चाहिँ थेनी गदेला लागरी लस्यु साचिन अद्भुत ताम्ला बारेरी साझा लस्युगो थेनी गदेसी अद्भुत गभाई ज्ञानम नेन नाई थेनी गदेदा विषम परमेश्वर चाहिँ चु रङला लागरी लस्युजी तिग्द विषम रङ परमेश्वरला सेवनी वसन्तान मुसुला यङ निनोन नेजी थेनी गला रोस बिजी हिन्ना रङ सही मुसुला तिगै दिन लिच्छ परमेश्वर सिंहला लुइरी याकरिया आचम्मला गेल सुजी नाई थेनन रोदा नला गभाई पंजी थेसे बिजी कि परमेश्वर जी चु रंगला लागरी लसुजी तिग्द विषम रंग परमेश्वरला सेमेन संतान मुसुला यंग नही नीनोन दोषी ने दोजी अवश्यन नाई थेलिच जवाह पिंदोला हिनबा हिनबा न परमेश्वरला सेमेन संतान हिनबा चु बारी सत्य चु हिन्ना कि यंग बेनन परमेश्वरला प्रिय संतान हिन्न रोसे याकरकी संतान दा अर्को भन्दा लान प्राथमिकता आपिन्छु मुला यंग बेनन रोला लागिरी लालन विशेष मुला यंग बेनन जोसे यसुदा यंगला परमेश्वरला रूपी ग्रहण लवा मुला यंग परमेश्वरला संतान हिन्न जोदा रोसे माया लसुबा थेन्दे वास्ता लसु मुला पहिलो युहन्ना 3 अध्यायले च्यागो यंगदा परमेश्वर आवासे गत्ते लान माया लवमुला परमेश्वरला मायासे लालन यंगदा परमेश्वरला संतान बिसी पंग महिन्ना चुतम सत्य एनोन हिन्ना थेदासेलमा जम्बोलिङला मिगदिसे यंगदा मु आसेबा हिन्ना तिग्द विषम थेनी गदिसे परमेश्वर दा मु आसेनी आमा आबा गदिदा हाइमा हाइमा थेनी गदेला जाजा मे कदे मध्ये याकरकी मैमुला वा स्यन्दो हलैसे मैमुला रंगला सेमेन संतान ला हाला हिन्ना आमा आवश्य जवाब पिनला थेनी गदे बेनन हिन्ना आमा आवश्य योनन लोपा की थेनी गदला जजामे जीनन नासला आरे प्रत्येक जत्तुगु रंगलन व्यक्ति दो तमुला प्रत्येक से शंदो भन्दा फरक मनमा देन व्यवहार लमुला तसै आमा आवश्य थेनी गदी मध्ये प्रत्येक दा थेरंग मन माया नमुला एफिसी 2:4-5 तर यंगला परमेश्वर लानन दया माया परमेश्वर हिन्ना ओचे यंगदा लानन माया लामा मुला थेत बासलमान यंग पापी सिगैनन सिसैनन परमेश्वर जी ख्रिस यसुदेन छ्यामनन सोनालाजी एनी गरिसे यंगबा थर्बानन थेनन परमेश्वरला दया माया सि हिन्ना यंग मध्ये हालै नन परमेश्वरला प्रेम यंगबरी योग्य ला आरेमुला जब बेनन पापी तसिचु संसारी हवमुला तसै परमेश्वरला प्रेम माया अनुग्रह दया क्षमा दसि प्लिङबा मुला रोसे याङदा चो ते लानन माया लजी कि रोसी रंगला कोला इसु ख्रिस्ट दा यंगला सट्टरी क्रुसी रंग दा बलिदान लबरी अनुमति पिंसुजी चुसे जा रंग दा लागरी लसुजी थेन्दी रोसी थे गला लागरी लसुजी भजन संग्रह 86:15 तस हे परम प्रभु रंग कृपालु दिन अनुग्रह परमेश्वर मसुला बोमो लबरी गाइगो प्रेम दिन विश्वास तरी छोना मुसुला यंगसी परमेश्वर ल लागेरी अद्भुत गे गदी लसुला विवाह आशा लदोला तिग्द विषम रोहाईमा दमन लानन दयालु मुसुला यंगसी गल्ती लामा रो दयालु मुसुला यंग रोला अपेक्षा छोना लबरी चुङमा रो यंग दिन धैर्यवान मुसुला देन बेनन भन्दा महत्वपूर्ण तम परमेश्वर से यंग दा रंगला बेनन तिंग से हाई मदमन प्रेम लबरी बफदार मुसुला यंग परमेश्वर जी भरोसा थनबरी हमला कि रो से नंदा हरेक घंटा हरेक दिन माया लस्युमला हाईमा चुरुंगमा एन तबरी हमला जब रंगला लुइरी रंग से भुक्ति पर समस्या का दिल कारण से लामा परमेश्वर माया रंग प्रति स्पष्ट अतामुला थे दुईरी रंग प्रति परमेश्वर प्रेम स्वीकार लस्युगो रंगदान सुंगो परमेश्वर से गादा लानन माया लस्युमला गा थेला सेम एन संतान हिन्न पक्का नोन रोला प्रेम से रंगला तिंगदा लेप्पा सोला थेलिचा लानन से परमेश्वर से रंग प्रति रंगला प्रेम दिन तरीका से प्रकार लस्युला बिसी ब्रंशुगो सपनिया 3:17 परम प्रभु एला परमेश्वर एदेन मुस्युला रो सोना लबरी सामर्थ्य मुस्युला रो एनन रो एदेन लानन आनंदित मुस्युला रो से रंगला प्रेम भी एदा शांता सुमुला वाई गोसी रो एला बारीरी नेस्युमुला परमेश्वर से रंगला लागरी धन शुभ तांगमा देन आनंद से रंग से भरिपूर्ण तबरी पिंसुगो हरेक शोरी रंग प्रति परमेश्वर माया दा दंशुगो रंग छम नोन न्यंशुगो रंग प्रति परमेश्वर फलाईरी आनंदित तशुगो गेन स्वरी स्वीकार लशुगो ना परमेश्वर सेमनी संतान हिंबा थेलिचा रोसी रंग माया प्रकार लशुला बिसी ब्रंशुगो चुरा अपेक्षा लशुगो तिग्दा विषम रंग साचिन रोला सेमनी संतान मुस्युला आमेन रंगीला जीवन रे परमेश्वर से प्रशस्त आशीष दिन्छु गई
2: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्छुजी कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ कार्यक्रमलाई बारे रे रंगीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम गन्दा सम्पर्क लसिगो गन्दा फोन नम्बर मुला 98685353
4: हस्त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङ्गी छङमदानु जय मसी नमस्कार।

मेगाहर्ट्ज रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला दिउँसोको 2 बज्यो।

0: नेपाल को नया रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

लिएर नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी लाइफ्स गुड

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला साँझको 5 बज्यो।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला साँझको 6 बज्यो।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बेलुकीको 7 बज्यो।

सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।